सुना है लोगों से खाटू वाले श्याम जी बुरी से बुरी मुसीबत से भी निकाल सकते हैं। आ रहा हूँ मैं भी बाबा, अब आप ही हैं जो मुझे संभाल सकते हैं।

हवाओं के इशारे से पैगाम आ रहे हैं, दुनिया भर से लोग तमाम आ रहे हैं। खुशनसीबी हमारी कि हमें भी बुलावा आया है, लेकर के हाथों में निशान

0: कल कोर्ट में गवाही देना बहुत जरूरी है, बेगुनाहों को सजा नहीं होनी चाहिए मेरे भाई।
1: दो चार बेगुनाह मर गए तो क्या हुआ, तुम्हारे इस भैया जी की वजह से तुम्हारे घर के चूल्हे जल रहे हैं।
2: किसी भी तरीके से वो कोर्ट नहीं पहुंचना चाहिए, जो मर्जी हो जैसे मर्जी हो उसे रोकना है।
3: तू चिंता मत कर, कल मैं पहुंचाऊंगा तुझे कोर्ट।
4: नहीं पहुंचेगा भैया जी।

0: सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो?
1: करिश्मा बुलाने जा रहा हूँ।
0: बहू को? अभी दो दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
1: दो दिन, दो साल जैसा नहीं लग रहा। और बारिश भी आने वाली है।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

गुड मॉर्निंग सुप्रभातम नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल आप ट्यून कर रहे हैं 99.6 रेडियो डीएस गंगा पोल सिटी का तड़का पर। दोस्तों फिलहाल आप सुनेंगे नए तराने कार्यक्रम के बाद अब हेलो फरमाइश। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के साथ आप आनंद लेंगे हेलो फरमाइश का।

0: चलिए राधे
1: आ रहे हैं सर आपको आपकी। हेलो

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ।
1: मोहम्मद हारून जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: जिला विदिशा।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
0: फिल्म है आशिकी।
1: आशिकी का कौन सा गाना है?
0: दिल का आलम।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना।

0: कर रहा है 3 साल। हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं आपका?
1: गुलशन।
0: गुलशन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जंगलापुर सिटी।
0: बताएं गुलशन जी, कौन सा कंपनी सुनना चाहते हैं? बिल्कुल सुना रहे हैं गुलशन जी आपको, आपकी फरमाइश का।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.

0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
1: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
1: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
3: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
4: हेलो,
5: नाम बताएं।
4: जयराम जी सर।
5: जयराम जी की नाम बताएं।
4: आसाराम जागा सर।
5: कहाँ से बात कर रहे हैं आसाराम जी?
4: गंगापुर सिटी अम्बेडकर धर्मशाला से।
5: पता है आसाराम जी कौन सा गाना सुनना है?
4: जरा जर ठेरो राम।
5: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी प्रवेश के बाद।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

MBBS कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण, डॉक्टर या इंजीनियर, IAS या RAS, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाएं।

0: करता है।
1: जय किशन।
0: जय किशन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं गंगापुर सिटी, जे आर गारमेंट।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: वो मैं सहरा बांध के आऊँगा मेरा पाटा।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आप, काफी फेमस का ये गाना।

तुम वक्त हो चुका है 10:29 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। हमारी स्टूडियो कॉलिंग नंबर है 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5 पर कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। पुनः प्रयास करें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5 पर कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे।

0: सर नमस्कार
1: जी। नमस्ते, नाम बताएं आपका।
0: हाँ, रतन लाल बोल रहा हूँ, महू कला से।
1: रतन लाल जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप
0: आज, वो सुना दो भाई साहब मेरे को। तन डोले मेरा मन बोले मेरे।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
0: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धरती।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी। हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
4: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
3: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
5: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
6: हेलो।
7: हेलो
6: जी, नाम बताएं सर।
7: जिला बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें।
6: रूपचंद जी, आपको भी आपके परिवार जन्म समस्त मित्र जन्म समस्त श्रोताओं को नमस्कार। बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप?
7: गंगा जमुना सरस्वती का साजन मेरा उस पार है।
6: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपको। तो मैं इसका एक

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: रोहित
0: रोहित जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: आदर्श नगर।
0: बताएं रोहित जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस पे?
1: फिर भी पसंद तो तेरी।

दोस्तों वक्त हो चुका है 10:59 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करेगा 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS।

0: जी नाम बताएं सर।
1: नाम योगेश।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: अगला मस्जिद से।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: जादूगर संजय सोनगिरी संजय हो गई आदमी यार। बिल्कुल।

0: आपका?
1: जम्मू से केशव शर्मा जी।
0: केशव शर्मा जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: अरे आयत नाथ जी, मुझे दो जासूस फिल्म का गाना है, कुरवैया लेके चली नैया।
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर, आपकी सुनाए इसके बैठे।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम।
3: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
2: जी मेरा नाम अक्षत है।
3: कहाँ से बात कर रहे सर?
2: मैं गंगापुर जीआर गारमेंट्स से बात कर रहा हूँ।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: ये गाना है जरूरी था।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। हेलो

0: आज मैं।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
2: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: अमन है, जीआर गारमेंट से बोल रहे हैं।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: लाल दुपट्टे वाली, तेरा नाम बताओ।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: नमस्कार सर।
3: सर नमस्ते।
2: शहजाद खान पुराने मिल गया।
3: हाँ जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: जान जाने जनाब।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: कल्पना।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: शेकी शेकी।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो
1: जी, नाम बताए सर।
0: इसलिए भी आई योगेश गैंगड़े देने तरह सकती है।
1: योगेश जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: फिल्म है सच्चा झूठा और गीत के बोल है रोज आती हो तुम ख्यालों में।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना।
0: धन्यवाद।
1: वेलकम।

0: फूला देवी।
1: फूला देवी जी कहाँ से बात कर रहे हैं
0: आप? मिर्जापुर से, रेगर मोहल्ला।
1: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं आपको, आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम विष्णु कुमार है मैम। मैं
1: कहाँ से बात कर रही?
0: मिर्जापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: गाना है मैं हूँ दुल्हन इकरार।
1: ओके सर, खुदा आपकी सर्वाइस परिपूर्ण।

0: अमिताभ अमिताभ अमिताभ
1: हेलो।
2: हाँ जी सर, नमस्ते।
1: नमस्कार जी, नमस्कार।
2: नाम क्या है आपका?
1: बाबू खान।
2: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: बल्लापुर सिटी।
2: कौन से बात हो?
1: जिंदगी एक अजब मोड़ पे आ खड़ी थी। और
2: आपकी फरमाइश करिएगा ना।

0: ये कहता जय गीत सुना लो बेटा।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ठीक है बेटा, बाबा नानक सिंह चढ़दी कला, सत श्री अकाल बेटा। सत श्री अकाल।
1: सत श्री अकाल सर।
0: सत श्री अकाल बेटा।

0: जय भवानी।
1: जय भवानी मामा जी, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम विमल शर्मा है, मऊ कला गंगा प्रकृति से बोल रहा हूँ।
1: मामा जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाने के बोल हैं, तेरे नैना नैना काफिला ना बड़े तेरे नैना।

0: बाबा जी किथे बख्शोनी पऊगी जी ये पुल।
1: गुरु रामदास जी दी नगरी चक रामदास।
0: असि अज ही रवाना होने बाबा जी।
2: नहीं
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
4: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो।
5: हेलो हेलो।
6: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे?
5: गंगापुर सिटी देवनगर।
6: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
5: गुजारा।
6: कौन सा?
7: इन्हां दी धर्म कदरी होने के नाते मैं पेंडा पूरी शरदा ते पावे।

0: नाम क्या है आपका?
1: सचिन।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हो? नसिया कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: दया।
0: कौन सा?
1: कैसे हो तुम, कैसे हो?
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो,
1: हाँ जी मैम, क्या है आपका?
0: मैम मेरा नाम आरती वर्मा लालकोट।
1: हाँ जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: इतना प्यारा है शिंगा।

दोस्तों वक्त हो चुका है 12:04 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: पूजा शर्मा।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: इंगोटिया से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: फिलहाल तो तेरा, अभी तो फिलहाल किसी और का हूँ।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: नाम जनता राम।
1: कहाँ से बात करूँ?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: बस एक तू ही अपनी थी।
1: ओके जी, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ सर नमस्ते, नाम क्या है आपका?
1: लतीफ अहमद रैना।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: कश्मीर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: आज ये तलत अजीज की आवाज में सुना ये गाना।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ जी
0: नमस्कार मैम।
1: सर नमस्ते,
0: यस रेडियो से बोल रहे थे मैम।
1: हाँ जी सर।
0: मैम मेरे को गाना सुनना है ठहरे हुए पानी में शंकर नाम।
1: सर नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम है विष्णु कुमार।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: ठहरे हुए पानी में शंकर ना मारता हूँ।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ही गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम।
1: यू आर वेलकम।

0: हेलो।
1: हाँ जी, क्या है आपका?
0: मिस्टर शर्मा कंगापे से पूछ रहे हैं।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: समुंदर में किनारा तू।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: कुछ सुनाएगा नहीं?
1: तो कहा ही नहीं।
0: अच्छा, जी मैं कहा फिर सुनाएगा?

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी।

गुड आफ्टरनून दोस्तों, वक्त हो चुका है, एक बज चुका है। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहे तरान हेलो फरमाइश। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे नहे तराने कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानव शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावत और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी FCI गोडाउन रोड गंगापुर सिटी नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी। दोस्तों 1:02 का समय हो चुका है। फिलहाल आप ट्यून कर रहे हैं 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। दोस्तों गंगापुर सिटी का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के साथ आप सुन रहे हैं महिला जगत। दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक प्यारे से एक नगमे के साथ है और सुनेंगे ढेर सारी बातें और महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे, सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना, आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएसआई एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी दोस्त प्रियंका गुप्ता, आप सभी का स्वागत है हमारे रेडियो डीएस 89.6 पर। हमारा जो विशेष कार्यक्रम है, महिला जगत में महिलाओं में पोषण जागरूकता और स्वस्थ जीवन शैली विशेष कार्यक्रम। आज का विषय है महिलाओं में पोषण जागरूकता और स्वस्थ जीवन शैली। दोस्तों, आप जानते हो, बदलती जीवन शैली और बढ़ती भाग दौड़ के बीच स्वास्थ्य सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, और जब बात महिलाओं की हो तो यह विषय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। महिलाएं परिवार की रीढ़ होती है, लेकिन अक्सर वही अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देती है। वे परिवार के सभी लोगों की जरूरतें भी पूरी करती है, लेकिन खुद समय पर खाना नहीं खाती हैं, ना ही वो समय पर आराम करती हैं। और अगर उनसे बोला जाए कि चलो आपको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, तो वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाएंगे और धीरे धीरे अपनी बीमारी को बढ़ा लेती हैं। अब इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हैं तो एक जो सवाल है वो हमारे सामने आता है कि ये समस्या पैदा क्यों हुई। अब ये समस्या पैदा हुई थी सही पोषण ना मिलने की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सही पोषण क्या है। सही पोषण का मतलब केवल ज़्यादा खाना नहीं होता। संतुलित भोजन में शरीर के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व होने चाहिए, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन और कार्बोहाइड्रेट। यानी जो हम खाना ले रहे हैं, जो हम डाइट ले रहे हैं, तो उनके अंदर ये सारी चीज़ों का होना आवश्यक होता है, तभी हमें पूरा पोषण मिल पाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आधुनिक जीवन शैली और स्वास्थ्य। आजकल लोग घर के खाने से ज़्यादा बाहर के खाने की ओर आकर्षित हो रहे हैं। फास्ट फूड स्वादिष्ट जरूर लगता है, लेकिन यह शरीर को धीरे धीरे कमजोर करता है। महिलाओं को चाहिए कि वे घर का ताज़ा और पौष्टिक भोजन ही खाए और उसको ही प्राथमिकता दे। अब कभी कभार ये होता है कि जो महिलाएं हैं वो काम में इतनी बिजी हो जाती है, घर के कामों में, बच्चों में, कि वो अपना खुद का ध्यान नहीं रख पाती हैं, और मॉर्निंग से ही उनके काम शुरू हो जाते हैं और वो सुबह का जो नाश्ता है उसको लेना भूल जाती हैं। तो महिलाओं के लिए सुबह का नाश्ता जरूरी क्यों है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। कई महिलाएं काम की जल्दी में नाश्ता छोड़ देती हैं, लेकिन जो सुबह का नाश्ता होता है वो उन महिलाओं को पूरे दिन की ऊर्जा देता है। यदि आप नाश्ता नहीं करोगे तो वो आपको पूरे दिन की जो भी एनर्जी है वो नहीं मिल पाएगी। और अगर यदि जो हम ब्रेकफास्ट ले रहे हैं वो अगर पौष्टिक होता है तो जो हमारा शरीर है वो दिन भर सक्रिय रहता है, यानी हमारे अंदर वो एनर्जी बनी रहती है। अब नाश्ता भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कई बार महिलाओं में मैंने देखा है कि महिलाएं मोटापे से ज़्यादा गिर जाती हैं। तो टॉपिक है हमारा मोटापा और महिलाओं का स्वास्थ्य।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
4: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव, एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।

0: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: आज कई महिलाएं मोटापे की समस्या से परेशान हैं, गलत खानपान और शारीरिक गतिविधियों की कमी से यही मोटापा बढ़ता है। यानी जो इसका मुख्य कारण है वो है गलत खानपान, फास्ट फूड, मार्केट का खाना, ये सब इसके मेन कारण होते हैं। मोटापा, मधुमेह, ब्लड प्रेशर और हृदय जैसी बीमारियां हैं उनके खतरे को बढ़ाता है। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन कौन सी चीजें हमारे लिए अच्छी हैं तो हमें उन्हें ही खानी चाहिए, ना कि हम फास्ट फूड की तरफ भागे कि हमने ये डाइटिंग की जो आदत गलत हो जाती है उसका क्या सोल्यूशन है। कुछ महिलाएं होती हैं वजन कम करने के लिए खाना कम कर देती हैं कि नहीं मुझे तो वजन कम करना है, मैं आज से खाना ही नहीं खाऊंगी, या फिर एक अपना पीरियड बना लेती हैं कि नहीं मुझे तो आज दिन भर में यही खाना है, या फिर भूखी रहती हैं। तो ये भी गलत है क्योंकि ये जो होता है वो तरीका वो शरीर को कमजोर बना देता है, और जो सही तरीका है वो है संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम। हम अपने खाने में जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो हमारे खाने को क्या करेंगे, संतुलित कर देंगे, और अगर उसके साथ हम रोजाना एक्सरसाइज करें तो मोटापा बढ़ेगा ही नहीं। नेक्स्ट है इसमें कि पानी और शरीर की ऊर्जा, यानी हमारी शरीर के लिए पानी की आवश्यकता क्यों होती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम कम पानी पिएंगे तो क्या होगा, हमारी थकान होगी, सिर दर्द होगा और हमें कमजोरी भी महसूस हो सकती है। तो हमारे शरीर के लिए पानी भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है मानसिक तनाव और महिलाओं की जिंदगी। आप जानते हो एक महिला समाज में रहती है तो उनके तो मानसिक तनाव बना ही रहता है। आज महिलाएं मानसिक तनाव का भी सामना कर रही हैं, जैसे काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां और समय की कमी उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित करती हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक सोच और आराम जरूरी है जो आज की महिलाओं को नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है योग और ध्यान का महत्व, यानी योग और ध्यान के द्वारा भी हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं। योग महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, जबकि ध्यान यानी मेडिटेशन तनाव कम करता है और हमारे मन को शांत भी रखता है। ये सारा करने के बाद भी अगर हमें स्वस्थ रहना है तो उसके लिए हमें समय समय पर हमारे स्वास्थ्य की जांच कराना भी जरूरी है। स्वास्थ्य जांच क्यों जरूरी है इस पर बातचीत करते हैं। कई महिलाएं बीमारी के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देती हैं, लेकिन समय पर जांच से बीमारी का पता जल्दी चल सकता है और उसका इलाज भी संभव है। इसलिए नियमित ब्लड टेस्ट और स्वास्थ्य जांच जरूरी है। इसमें ही एक विशेष बात आती है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए भी ये सब बहुत बहुत जरूरी होते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल, गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक भोजन और नियमित जांच बेहद जरूरी है। इस समय माँ का स्वास्थ्य सीधे बच्चे के विकास से जुड़ा होता है, इसलिए हमें जब भी महिला गर्भवती होती है तो बच्चे के साथ साथ उस महिला का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। अब नेक्स्ट है हमारा ग्रामीण महिलाओं की चुनौतियाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई महिलाएं पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर हैं। जागरूकता की कमी के कारण कई समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए हमें गांव-गांव जाना होगा और स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ाना होगा। इसमें हमारा अगर परिवार समाज भी सहयोग करे तो ये और भी बेहतर हो जाएगा। यदि परिवार महिलाओं को आराम, अच्छा भोजन और सम्मान देगा तो उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा। महिलाओं को केवल जिम्मेदारियां का बोझ नहीं बल्कि सहयोग और देखभाल भी मिलनी चाहिए। धन्यवाद।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो DS के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: श्रोताओ, मैं आपकी दोस्त प्रियंका गुप्ता, आप सभी का स्वागत है हमारे रेडियो डीएस 89.6 पर। हमारा जो विशेष कार्यक्रम है, महिला जगत में महिलाओं में पोषण जागरूकता और स्वस्थ जीवन शैली विशेष कार्यक्रम। आज का विषय है महिलाओं में पोषण जागरूकता और स्वस्थ जीवन शैली। दोस्तों, आप जानते हो, बदलती जीवन शैली और बढ़ती भाग दौड़ के बीच स्वास्थ्य सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, और जब बात महिलाओं की हो तो यह विषय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। महिलाएं परिवार की रीढ़ होती है, लेकिन अक्सर वही अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देती है। वे परिवार के सभी लोगों की जरूरतें भी पूरी करती है, लेकिन खुद समय पर खाना नहीं खाती हैं, ना ही वो समय पर आराम करती हैं। और अगर उनसे बोला जाए कि चलो आपको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, तो वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाएंगी और धीरे धीरे अपनी बीमारी को बढ़ा लेती हैं। अब इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हैं तो एक जो सवाल है वो हमारे सामने आता है कि ये समस्या पैदा क्यों हुई। अब ये समस्या पैदा हुई थी सही पोषण ना मिलने की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सही पोषण क्या है। सही पोषण का मतलब केवल ज़्यादा खाना नहीं होता। संतुलित भोजन में शरीर के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व होने चाहिए, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन और कार्बोहाइड्रेट। यानी जो हम खाना ले रहे हैं, जो हम डाइट ले रहे हैं, तो उनके अंदर ये सारी चीज़ों का होना आवश्यक होता है, तभी हमें पूरा पोषण मिल पाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आधुनिक जीवन शैली और स्वास्थ्य। आजकल लोग घर के खाने से ज़्यादा बाहर के खाने की ओर आकर्षित हो रहे हैं। फास्ट फूड स्वादिष्ट जरूर लगता है, लेकिन यह शरीर को धीरे धीरे कमजोर करता है। महिलाओं को चाहिए कि वे घर का ताज़ा और पौष्टिक भोजन ही खाए और उसको ही प्राथमिकता दे। अब कभी कभार ये होता है कि जो महिलाएँ हैं वो काम में इतनी बिजी हो जाती है, घर के कामों में, बच्चों में, कि वो अपना खुद का ध्यान नहीं रख पाती हैं, और मॉर्निंग से ही उनके काम शुरू हो जाते हैं और वो सुबह का जो नाश्ता है उसको लेना भूल जाती हैं। तो महिलाओं के लिए सुबह का नाश्ता जरूरी क्यों है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। कई महिलाएँ काम की जल्दी में नाश्ता छोड़ देती हैं, लेकिन जो सुबह का नाश्ता होता है वो उन महिलाओं को पूरे दिन की ऊर्जा देता है। यदि आप नाश्ता नहीं करोगे तो वो आपको पूरे दिन की जो भी एनर्जी है वो नहीं मिल पाएगी। और अगर यदि जो हम ब्रेकफास्ट ले रहे हैं वो अगर पौष्टिक होता है तो जो हमारा शरीर है वो दिन भर सक्रिय रहता है, यानी हमारे अंदर वो एनर्जी बनी रहती है। अब नाश्ता भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कई बार महिलाओं में मैंने देखा है कि महिलाएं मोटापे से ज़्यादा गिर जाती हैं। तो टॉपिक है हमारा मोटापा और महिलाओं का स्वास्थ्य। आज कई महिलाएं मोटापे की समस्या से परेशान हैं। गलत खानपान और शारीरिक गतिविधियों की कमी से यही मोटापा बढ़ता है। यानी जो इसका मुख्य कारण है वो है गलत खानपान, फास्ट फूड, मार्केट का खाना, ये सब इसके मेन कारण होते हैं। मोटापा, मधुमेह, ब्लड प्रेशर और हृदय जैसी बीमारियां हैं उनके खतरे को बढ़ाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं तो हमें उन्हें ही खानी चाहिए, ना कि हम फास्ट फूड की तरफ भागे। अब नेक्स्ट है कि हमने ये डाइटिंग की जो आदत गलत हो जाती है उसका क्या सोल्यूशन।

वजन कम करने के लिए खाना कम कर देती हैं कि नहीं मुझे तो वजन कम करना है, मैं आज से खाना ही नहीं खाऊंगी, या फिर एक अपना पीरियड बना लेती हैं कि नहीं मुझे तो आज दिन भर में यही खाना है, या फिर भूखी रहती हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि ये जो होता है वो तरीका वो शरीर को कमज़ोर बना देता है, और जो सही तरीका है वो है संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम। हम अपने खाने में जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो हमारे खाने को क्या करेंगे, संतुलित कर देंगे, और अगर उसके साथ हम रोज़ाना एक्सरसाइज करें तो मोटापा बढ़ेगा ही नहीं। नेक्स्ट है इसमें कि पानी और शरीर की ऊर्जा, यानी हमारी शरीर के लिए पानी की आवश्यकता क्यों होती है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कम पानी पिएंगे तो क्या होगा, हमारी थकान होगी, सिर दर्द होगा, और हमें कमज़ोरी भी महसूस हो सकती है। तो हमारे शरीर के लिए पानी भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है मानसिक तनाव और महिलाओं की ज़िंदगी। आप जानती हो एक महिला समाज में रहती है तो उनके तो मानसिक तनाव बना ही रहता है। आज महिलाएं मानसिक तनाव का भी सामना कर रही हैं, जैसे काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां और समय की कमी उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित करती हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक सोच और आराम जरूरी है, जो आज की महिलाओं को नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है योग और ध्यान का महत्व, यानी योग और ध्यान के द्वारा भी हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं। योग महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, जबकि ध्यान यानी मेडिटेशन तनाव कम करता है और हमारे मन को शांत भी रखता है। ये सारा करने के बाद भी अगर हमें स्वस्थ रहना है तो उसके लिए हमें समय समय पर हमारे स्वास्थ्य की जांच कराना भी जरूरी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्वास्थ्य जांच क्यों जरूरी है, इस पर बातचीत करते हैं। कई महिलाएं बीमारी के शुरुआती लक्षणों को नज़रअंदाज कर देती हैं, लेकिन समय पर जांच से बीमारी का पता जल्दी चल सकता है और उसका इलाज भी संभव है। इसलिए नियमित ब्लड टेस्ट और स्वास्थ्य जाँच जरूरी है। इसमें ही एक विशेष बात आती है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए भी ये सब बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल, गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक भोजन और नियमित जांच बेहद जरूरी है। इस समय माँ का स्वास्थ्य सीधे बच्चे के विकास से जुड़ा होता है, इसलिए हमें जब भी महिला गर्भवती होती है तो बच्चे के साथ साथ उस महिला का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। अब नेक्स्ट है

0: हमारा ग्रामीण महिलाओं की चुनौतियाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई महिलाएं पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर हैं। जागरूकता की कमी के कारण कई समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए हमें गांव-गांव जाना होगा और स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ाना होगा। इसमें हमारा अगर परिवार समाज भी सहयोग करे तो ये और भी बेहतर हो जाएगा। यदि परिवार महिलाओं को आराम, अच्छा भोजन और सम्मान देगा तो उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा। महिलाओं को केवल जिम्मेदारियां का बोझ नहीं बल्कि सहयोग और देखभाल भी मिलनी चाहिए। धन्यवाद।
1: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
2: रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू रेडी?
0: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी दोस्त प्रियंका गुप्ता। गांव है मेरा बालोती। जिंदगी के सफर में कभी कभी अपने ही अपनों से दूर हो जाते हैं या फिर हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि अपनों का साथ छूट जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, उनके गुजारे का क्या, क्या कहता है हमारा कानून? तो आज हमारे कार्यक्रम की विषय है भरण पोषण का अधिकार। अब सबसे पहले आता है कि भरण पोषण आखिर है क्या। कई लोग होते हैं तो वो इस बारे में नहीं जानते हैं। दोस्तों, कानून की नजर में भरण पोषण का मतलब सिर्फ खाना, कपड़ा या छत देना ही नहीं है। इसका मतलब है कि आश्रित व्यक्ति के सम्मान के साथ आप जीवन जी सके और उसके स्तर के अनुसार उसे सुख सुविधाएं मिले। ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के माइंड में सबसे पहले आता है। अब फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि किसे मिलता है यह अधिकार। सबसे जरूरी बात है, यह हक सिर्फ पत्नियों को ही नहीं बल्कि हमारे घर के बुजुर्गों, जैसे कि माता पिता हैं, चाचा चाची हैं, उनमें जैसे नाबालिग बच्चे हैं, उनको भी प्राप्त है। लेकिन ये सबको मिल जाए ये पॉसिबल नहीं होता है। वो है, इसके लिए कानून क्या कहता है? तो यहाँ पर एक कानून बनाया गया है CRPC की धारा 125, CRPC की धारा 125। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चों या फिर माता पिता का भरण पोषण करने से मना करता है या उन्हें छोड़ देता है तो वे कोर्ट से गुजारा भत्ते की मांग कर सकते हैं, जैसा कि आज करते भी हैं। अगर जिनको नॉलेज रहती है, इस बारे में जानकारी रहती है, तो वो इस कानून की मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट है वरिष्ठ नागरिक अधिनियम। इसके तहत माता पिता को अपने बच्चों या वारिसों से गुजारा भत्ते का दावा कर सकते हैं और यह एक जो फास्ट ट्रैक प्रक्रिया है जो भी आज कई लोग करते हैं। अब इसी टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं। विशेष ध्यान देने योग्य बातें कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना है। अगर कोई व्यक्ति अदालत के आदेश के बावजूद भरण पोषण की राशि नहीं देता है या फिर उनकी इस सेवा को पूरा नहीं करता है तो उस पर जुर्माना और सजा का भी प्रावधान है। तो ऐसा हम कर सकते हैं ताकि हमें भी हमारा भरण पोषण अच्छी तरह से मिले। भरण पोषण का अधिकार। भारतीय कानून में महिलाओं, बच्चों और वृद्ध माता पिता को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान देने वाला एक मौलिक कानूनी अधिकार है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिवार के जितने भी आश्रित सदस्य हैं वो किसी भी स्थिति में बेसहारा ना रहे और उन्हें जीवन की बुनियादी सुविधाएं मिलती रहे। जैसे कि आज देखने को मिल रहा है ना, जैसे ही हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता हैं या हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बुजुर्ग हो गया है तो हम उनको इधर उधर करने की सोच लेते हैं, तो वो भी हमारी जीवन में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। शुभ दिन। इतना सही है।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी FCI गोडाउन रोड गंगापुर सिटी नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377 इसके अलावा 9983413111।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम।

नमस्कार, मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहे तराने, थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली विसरी यादें 89.6 रेडियो डीएस पर।

दोस्तों वक्त हो चुका है 3 बज चुके। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली बिसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो?
1: करिश्मा को लाने जा रहा हूँ।
0: बहू को? अभी दो दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
1: दो दिन दो साल जैसा नहीं लग रहा, और बारिश भी आने वाली है।

0: लंबा सुबह कहाँ जा रहे हो?
1: करिश्मा बुलाने जा रहा हूँ।
0: बहू को अभी 2 दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
1: 2 दिन 2 साल जैसा नहीं लग रहा, और बारिश भी आने वाली है।

दोस्तों वक्त हो चुका है 3:46 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल कर अपनी फरमाइशों को दर्ज कराए। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग नंबर है 6378024475 पर कॉल कर अपनी फरमाइशों को दर्ज कराए।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS
2: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।

गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चुका है 4 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमारे पास आई है सवाई माधेपुर से। सवाई माधेपुर से हमें कॉल किया है मोनिका मीणा जी ने। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम पायल जागा है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: सोनापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: परिंदे तड़फते देखी।
1: ओके मैम, सुना रहे हो आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: थैंक यू मैम।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: गुलशन।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
0: मुझे मस्त मॉल में जीने दें।

0: हेलो
1: जी नमस्कार
0: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: सागर बोल रहा हूँ दशहरा मैदान से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: हमदम मेरे मांगे जाओ कहना मेरे प्यार का।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो
0: सर, नमस्ते।
1: नमस्कार
0: सर, नाम क्या है आपका?
1: और तो बढ़िया हो ना?
0: हाँ जी सर, बढ़िया है।
1: गर्मी भर में तो नहीं लग रही होगी, माँ एसी चल रही होगी ना?
0: हाँ जी, एसी चल रही है। कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो,
0: आपका नाम क्या है? आपका
1: मोनिका।
0: कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना होगी?
1: ओ पिया पिया बुला दिया।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी, पर गाना

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: लीलावती।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: वो पीर पराई समझे।
1: ओके मैम, सुना।

0: हेलो
1: जी नमस्कार।
0: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: जी मेरा नाम अर्जुन पाल, अर्जुन पाल नाम है और जालौन यूपी से बात कर रहा हूँ।
0: तो कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाना है हम साथ साथ है का।
0: कोई सा भी सॉन्ग सर?
1: हाँ कोई सा।
0: ओके सर सुना, ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ठीक है।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: हम गंगापुर सिटी से बोल रहे हैं।
1: नाम क्या है आपका?
0: तमन्ना बेरवा।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
0: साई वाला।
1: साई?
0: हाँ
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपको।

तेरे बिना मेरी जिंदगी एक अधूरी कहानी थी, उसका मैं आज आखिरी पन्ना लिख रही हूँ। अलविदा।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: नाम जनता राम।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: बस एक तू ही अपनी सी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो नमस्कार जी। नमस्कार
1: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: मैं मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति बज रेडियो श्रोता मच श्री राधा सीते वार्ता कर रहा हूँ।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: आज डिंपल कपाड़िया का जन्मदिन है, उनका कोई गाना सुना दो।
1: डिंपल?
0: डिंपल कपाड़िया हीरोइन है ना, अभिनेत्री।
1: हाँ जी।
0: उनका जन्मदिन है 8 जून को।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी।

दोस्तों, जिंदगी सचमुच एक हसीन इत्तेफाक है। अगर इत्तेफाक ना हो तो मोहब्बत ना हो, शायरी ना हो, संगीत ना हो। अभी जो गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा था, कभी उसमें एक आवाज और भी शामिल थी। आज लेकर इस अधूरी गजल को पूरी कर दें और शाम को अमर कर दें।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: जी नाम मेरा कुशविंद्र मिश्रा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: हनी सिंह का चला दो, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।
0: और गाने सुना सकते हैं आप सर?

0: हेलो
1: जी, नाम क्या है आपका?
0: मैं बाबा टिल्लू।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: बीटेक फ्रॉम कानपुर।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: चांदनी मुलाकात में।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो?
1: करिश्मा बुलाने जा रहा हूँ।
0: बहू को अभी 2 दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
1: 2 दिन 2 साल जैसा नहीं लग रहा। और बारिश भी आने वाली है।

89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। किशोर दा को लाइमलाइट में रहना और मीडिया टेंशन पाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो एकांत में समय बिताना पसंद करते थे और इंटरव्यू देने से तो नफरत करते थे। लोग उनसे मिलने कम आए, इसीलिए उन्होंने अपने घर के लिविंग रूम में खोपड़ी और हड्डियां लगवा ली थी और साथ ही कमरे में रेड लाइट भी लगा रखी थी। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: 89.6 DSFM पे आप सुन रहे हैं मुझे यानी तनीषा को। ऐसा कहा जाता है कि किशोर दा अगर किसी से बदला लेने पर उतारू हो जाते थे तो किसी की भी नहीं सुनते थे। फिल्म प्यार किए जा में महमूद ने किशोर कुमार से ज्यादा पैसे ले लिए थे, बस यही बात उन्हें बिल्कुल रास नहीं आई। फिल्म पड़ोसन में डबल पैसे लेकर उन्होंने महमूद से अपना बदला लिया। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ। किशोर कुमार भले ही फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थे, लेकिन वो खुद को बॉलीवुड की पार्टीज और चकाचौंध से दूर रखा करते थे। लेकिन उन्हें खंडवा की दूध जलेबी बहुत पसंद थी। वो हमेशा कहा करते थे कि जब वो फिल्मों से संन्यास लेंगे तो खंडवा में जाकर ही बस जाएंगे। उनके इच्छानुसार उनका अंतिम संस्कार भी खंडवा में ही किया गया। सफरनामे में आज इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी 89.6 डीएसएफएम पे मदनीशा आपके साथ।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ,
2: अब क्या सुनाए।

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस। यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: राणा जी खबर पक्को है वो दुर्गा आज रात अपने यार के साथ मेले में जाने वाली है
1: आज की रात उस लौंडे की आखिरी रात होगी राणा से दुश्मनी लेने का मतलब है ये बंदूक और उसका सर

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: राणा जी खबर पक्को है वो दुर्गा आज रात अपने यार के साथ मेले में जाने वाली है
1: आज की रात उस लौंडे की आखिरी रात होगी राणा से दुश्मनी लेने का मतलब है ये बंदूक और उसका सर

दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।